और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।

0: फिर दर्द जह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती।
1: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا।
0: उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है।
1: वह

0: जब तुम्हारी बहन फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो उसको पाले, तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मुखलसी दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की। फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा, तुम काबिलियत और रिसालत के अंदाजे पर आ पहुंचे। और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है।
1: اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري
0: तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना।
1: اذهب الى فرعون انه طغى
0: दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है।
1: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
0: اور اس نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔
1: قَالَا

0: मुसला।
1: कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे शाइस्ता मजहब को नाबूद कर दें।
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا।
1: तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कतार बांध कर आओ, आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ।

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं।

तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी उसका कालिब जिसकी आवाज गाय की सी थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। अफला

तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आज भला मैं तुमको ऐसा दरख्त दूं जो हमें की जिंदगी का समरह दे और ऐसी बादशाहत कि कभी जायल ना हो।

0: आमा।
1: और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे।
0: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا।
1: वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया।

0: और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता।
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।

खान अबुल हकीक का कला था। हसन वती, हसन सलालम, इन आठों कलों के अलावा खैबर में मजीद कले और घड़ियां भी थीं, मगर वो छोटी थीं और कुव्वत व हिफाजत में उन कलों का हम पल्ला न थी। जहां तक जंग का ताल्लुक है तो वो सिर्फ अपने पहले मंतके में हुई। दूसरे मंतके के तीनों कले लड़ने वालों की कसरत के बावजूद जंग के बगैर ही मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। मारका का आगाज और कला नाम की फतह। आठों कलों में से सबसे पहले कला नाम पर हमला हुआ, क्योंकि यह कला अपने मोहल्ले वकू की नजाकत और स्ट्रेटजी के लिहाज से यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। और यही कला मरहब नामी इस शहजोर और जांबाज यहूदी का कला था, जिसे 1000 मर्दों के बराबर जाना जाता था। हजरत अली इब्ने अबी तालिब मुसलमानों की फौज लेकर उस किले के सामने पहुंचे और यहूद को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने ये दावत मुस्तरद कर दी और अपने बादशाह मरहब की कमान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबला खड़े हुए। मैदान जंग में उतर कर पहले मरहब ने दावत मबारजत दी, जिसकी कैफियत सलमा बिन अकू ने यूं बयान की है कि जब हम लोग खैबर पहुंचे तो उनका बादशाह मरहब अपनी तलवार लेकर नाजो तकबर के साथ हिटला था और यह कहता हुआ नमूदार हुआ, खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूं, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, हुब्बे जंगो पेकार शोला जन हो। इसके मुकाबिल मेरे चचा आमिर नमूदार हुए और फरमाया, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूं, हथियार पोश, शहजोर और जंगजू। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार मेरे चचा आमिर की ढाल में जा छुपी और आमिर ने उसे नीचे से मारना चाहा, लेकिन उनकी तलवार छोटी थी। उन्होंने यहूदी की पिंडली पर वार किया तो तलवार का सिरा पलट कर उनके घुटने पर आ लगा और बिलाखर इसी जख्म से उनकी मौत वाके हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियां इकट्ठी करके उनके बारे में फरमाया, इनके लिए दोहरा अजर है, वो बड़े जांबाज मुजाहिद थे, कम ही उन जैसा कोई अरब रुए जमीन पर हुआ होगा। बहरहाल हजरत आमिर के जख्मी हो जाने के बाद मरहब के मुकाबले में हजरत अली तशरीफ ले गए। हजरत सलमा बिन अकूह का बयान है कि उस वक्त हजरत अली ने यह अशआर कहे, मैं वो शख्स हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक, मैं इन्हें साए के बदले नेजे की नाप पूरी करूंगा। इसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वहीं ढेर हो गया। सामईन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे में आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6, live, station of the nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दो चार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।